0: हे पण गणित मी ऐकलंच असेल, खनके तो खनके क्यों खनके हाय रे मेरा कंगना,
1: गोरी गोरी बहाव में सफेद चमकते हुए और खनकते हुए कंगन, ऐसे कंगन जो रात को आसमान पर तारे देखकर अपने आप पर जुटे और गांव की कोई गोरी

पहना ये गुलाची पूने पहना, हंस कर दी कुर्बानी ओ हंस कर दी कुर्बानी, दे पहन झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी ओ खूब लड़ी मर्दानी।

बंद कमरे में कभी कभी जब दिए की लौ हिल जाती है तो एक बड़ा सा साया मुझको घूंट घूंट पीने लगता है। आंखें मुझसे दूर बैठ के मुझको देखती रहती हैं। कब आते हो, कब जाते हो, दिन में कितनी बार मुझे तुम याद आते हो।

0: बचना जालों से कहो मत वालों से बचना जालों से अभी तो कितनी दूर है दिल्ली हम दिल वालों से
1: अभी तो कितनी दूर

0: हे पण गाणं तुम्ही ऐकलंच असेल, खनके तो खनके क्यों खनके हाय रे मेरा कंगना,
1: गोरी गोरी बाहों में सफेद चमकते हुए और खनकते हुए कंगन, ऐसे कंगन जो रात को आसमान पर तारे देखकर अपने आप पर उठे और गांव की कोई गोरी छू छू कर अपने आप नाच उठे।

तूने पहना ये गुलाची तूने पहना हंस कर दी कुर्बानी ओ हंस कर दी कुर्बानी दे पहन झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी ओ खूब लड़ी मर्दानी।

0: आपकी फरमाइश। श्रोते हो तयार आहात ना? तुमच्या आवडीची गाणी आमच्यापर्यंत पोहोचवून रेडिओ वरून ऐकण्यासाठी आता फक्त नाशिकच नाही तर जगभरातील श्रोते सुद्धा या कार्यक्रमात जरूर सहभागी होऊ शकता आणि आपल्या आवडीची गाणी ऐकू शकता, कारण रेडिओ विश्वास हे चॅनल ऍपच्या माध्यमातून आपण ऐकू शकणार आहात जगभरात कुठेही आणि कधीही। त्यासाठी डाउनलोड करा प्ले स्टोर वरून किंवा ऍप स्टोर वरून रेडिओ विश्वास हे ऍप। कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आपण आम्हाला दर गुरुवारी सकाळी 11 ते 5 या वेळेत फोन करू शकता। त्यासाठी आमचा संपर्क क्रमांक आहे 8380016512। आपल्या आवडीची गाणी आपण ऐकणार आहात दर रविवारी संध्याकाळी 5 ते 6 आणि रात्री 11 ते 12 या वेळेत। तेव्हा जरूर सहभागी व्हा आणि आपल्या आवडत्या गाण्यांचा आनंद घ्या।
1: गाणे गा रे, गाणे गा।
2: कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता छाया, कुछ नहीं हो सकता। मैं यह लड़ाई नहीं लड़ सकता जिसे लड़ने से पहले ही आदमी हार जाता है। मैं हार गया हूं छाया।
3: सुधी।
2: हाँ छाया, लगता है यहां तो सिर्फ दूसरों के सर पे पांव रख के ही आदमी ऊपर चढ़ सकता है। सीधा रास्ता तो सिर्फ वहां जाता है जहां गुहा चला गया। इस शहर के लोग रोने के लिए कंधा नहीं देते, मरने तक इंतजार करते हैं कंधा देने के लिए।
3: मैं तुम्हारे साथ हूं सुदीप, तुम्हारे साथ छोटी सी खोली में भी अपना घर बसा लूंगी।
2: झूठे आदर्श की बात मत करो, चिढ़ होती है मुझे। घर बना लोगी, कपड़े के लीर का दिया जलाओगी और शाम को आधी सूखी रोटी खिलाकर सोचोगी कि हम लोगों ने घर बना लिया। हाथों में पेट लिए घूमोगे तुम और मैं पेट पे हाथ रखे घूमूंगा। इसे घर कहती हो तुम? नहीं छाया, बहुत देखा है ऐसे पीले चेहरों वाला आदर्श।
3: तुम निराश होगी सुदीप, मुझे विश्वास है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा।
2: हाँ, विश्वास, विश्वास। तुम्हें विश्वास है ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा? है, एक रास्ता है। हाँ छाया, मैंने भी अपनी सीढ़ी चुन ली है। मोदी,
3: मोदी
2: तुमसे शादी करना चाहता है ना, कर लो शादी। समझने की कोशिश करो छाया, कितने दिन जिएगा और कितने दिन जी सकता है। हाँ छाया, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ इसके बाद ही हम लोग अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं।
3: छे, किसी की कब्र पे अपना घर बनाऊंगी।

0: वाह वाह वाह वाह। पर वरी ये कौन सी ठुमरी है?
1: ये स्कॉटलैंड की ठुमरी।
0: स्कॉटलैंड की?
1: ये दो ही चीजें तो स्कॉटलैंड की मशहूर है, या ठुमरी या ठर्रा।
0: नशा आ गया। लेकिन मास्टर जी, ये ठुमरी है या ठर्रा?
1: ये ठर।
2: चमकाने जी,
1: ठुमरी चालू करता हूँ सेठ जी।
0: चलो नहीं, चलो नहीं, चलो नहीं
1: सेठ जी, आप जरा ठंडे हो जाइए सेठ जी। फिर